दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी।

0: और वो रूहानी आवाज है जुबिन नौटियाल जी की. लॉट्स ऑफ वंडरफुल कमेंट्स कमिंग अबाउट द सॉन्ग. एज आखिर सेज, कुछ चीजें सिर्फ जुबिन की आवाज में महसूस की जाती है. मीनिंग सम थिंग्स कैन ओनली बी फेल्ट विद द वॉइस ऑफ Zubin Nautiyal. I think a lot of ladies actually sent in wonderful comments about the voice of this amazing artist. And of course, we brought you that song because it is so wonderful to honor the mother in her divine form. Jiha dosto, aap Geetanjali sun rahe hain. Aur चलिए हम आपको बताएं कि आज के कार्यक्रम में हम क्या करने जा रहे हैं. कुछ ही क्षणों में हम थोड़ी सी हिंदी सीखेंगे एक बहुत ही नेक विचार के साथ. ये हम हर हफ्ते करते हैं. वी गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट इन द हिंदी लैंग्वेज एंड ऑफर एन इंग्लिश ट्रांसलेशन देयर आफ्टर. आज के खास कलाकार हैं कैलाश खेर जी. एज यू नो, एवरी वीक वी सेलिब्रेट अ स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ हिंदी म्यूजिक. एंड दीज आर्ट consciously or unconsciously contribute to the enhancement of the Hindi language. And there's a very interesting piece that I need to share about you in terms of what people have to say about Kailash Kher and his Hindi. So our special artist for today is Kailash Kher. Aur program ke dusre bhag mein hum ek bar phir se thodi si Hindi seekhenge is idiom ke saath. Aur aaj ka idiom hai kand ho gaya. कांड हो गया. इसका मतलब क्या है? सो इफ यूड लाइक टू डीकोड द इडियम और यूड लाइक टू शेयर योर थॉट्स ऑन कैलाश खेर, रिमेंबर आवर व्हाट्सएप नंबर इज 0716137803. और कुछ क्षणों में हम थोड़ी सी हिंदी सीखेंगे.
1: यू आर लिसनिंग टू गीतांजलि. लोटस एफएम.
0: And it is now time to learn some Hindi exclusive to Geetanjali on Lotus FM. And as you will know, every week we give you a wonderful saying that has a lot of value in terms of virtue. And today's one is a very wonderful offering as it brings home some wonderful truths of life. And it reads like so. Hey Ishwar, yeh zindagi tera diya upkar hai. सासे तेरी उद्धार है. गुरूर करे भी तो किस चीज पर. हम तो यहाँ तेरे किराएदार हैं. Once again it reads, हे ईश्वर, ये जिंदगी तेरा दिया उपकार है. सासे तेरी उद्धार है. गुरूर करे तो किस चीज पर. हम तो यहाँ तेरे किराएदार हैं. And all of that translated loosely into English reads like so. Dear Lord, this life is but a gift from you. Even our breath is borrowed from you. Why should we be arrogant or vain? We are merely tenants here in your space. I think a very valuable truth uttered in these words. So what

बिल्कुल दोस्तों, आज के खास कलाकार हैं कैलाश खेर जी, एंड जस्ट अ लिटिल नोट ऑन द सॉन्ग दैट वी हैव जस्ट हर्ड, यादा तेरिया, रिटन बाय कैलाश जी, एंड ऑफ कोर्स द म्यूजिक कंपोज बाय हिम एज वेल, एंड इट इज फ्रॉम एन एल्बम, हिज मोस्ट रीसेंट एल्बम आई बिलीव, व्हिच इज टाइटल्ड रंगीली। जी हाँ दोस्तों, आप गीतांजलि सुन रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं लता मंगेशकर जी की रूहानी आवाज के साथ।

another magical artist of the Hindi film industry. And of course, it was a non-film song in the voice of Shankar Mahadevan, O Sahiba, an absolute firm favorite on my playlist. जी हाँ दोस्तों, आप गीतांजलि सुन रहे हैं. खेत की बात है, मगर समापन की घड़ी करीब आ गए हैं और इसका मतलब है कि अब मुझे शुभरात्रि कहनी है. और मैं आपको याद दिलाती हूँ कि 7 बजे के समाचार के बाद पारी आएगी वॉक The talk, rather talk at 7 की. अगले हफ्ते अगर भगवान की मर्जी हो तो हम जरूर मिलेंगे. तब तक के लिए मेरी ओर से नमस्कार और शुभरात्रि.